यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून 2026। सुबह के 5:53 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। 6 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 6:05 पर समय रहेगा प्रोग्राम सुप्रभात का। लेकर आपके साथ रहेंगी चंद्रानी। हिंदी में समाचार होंगे। 7:05 पर समय रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का। प्रोग्राम लेकर आपके साथ होंगे निखिल कुमार और 8 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आपके साथ रहेंगे चंद्रानी। 9 बजे समय रहेगा प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए गाने निखिल कुमार के साथ। 10 बजे का समय रहेगा हिंदी।

10:05 पर समय रहेगा प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का, निहारिका के साथ आप प्रोग्राम एंजॉय करेंगे। 11:00 समय रहेगा हिंदी में समाचार का। 11:05 पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेंड्स में आपके साथ रहेंगी गोपिता, और 12:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। 12:05 पर निहारिका के साथ आप वेस्टर्न म्यूजिक।

0: लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
2: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित

0: एक भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
5: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इजराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इजराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इजराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस।

Well, listeners, kama kuyo apnike langa message, kana higina se, my message puri diya se, jaliki gina puta se, good morning, RJ sir, gun play kuriya tu moja lagiya se, oh, koi na likhiya se, aayu to likhi gina puta se, bali patthar pa, shikari rongpa, romesh patro, bhaikon munda, jogendra rongpi, kihai, engti, aro dakwan hanse, takhani likhi gina puta se, well, thank you so much, aro likhiya se, yate, abijit, তাইবি বগাজন প্রাকো লিখি আছে গুড মর্নিং স্যার ইমান ভাল ভাল গানা প্লে করে আছে কইনে লিখি আছে ওয়ান্স এগেইন সো থ্যাংক ইউ সো মাচ অভিজিৎ লিখি গিনে পঠাই দিয়া কারণে আর ইয়াতে গুড মর্নিং শায়রি কইনে লিখি আছে ফ্রি ফ্রি ফ্রি বাদল কি সাথ বর্ষা ফ্রি সূরজ কা সাথ রোশনি ফ্রি চাঁদ কি সাথ তারে ফ্রি ওর ইস এস এম এস কি সাথ গুড মর্নিং ফ্রি आपकी पसंदीदा गाने लगातार एफएम ट्रगुपन 103 मेगाहर्ट्ज पर लिसनर्स असे दुर्गेश नगनपुरी वेल थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल शायरी अनदर मैसेज लिखिए से ना पा सकते हैं ना भुला सकते हैं तेरे नाम दिल से नहीं मिटा सकती है चक्कर भी दूर नहीं जा पाती और पास आने की हिम्मत भी नहीं जिता पाती Hi RJ Jacob, I'm having a great time with your lovely playlist. Thank you, you know, from Loni Kohima. Thank you so much, Loni. आपने इतना मीठा लिख के भेज दिया इसलिए मैं भी क्या बोलूं आपका मैसेज पढ़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगा Anyway, thank you so much. And yes, listeners, कहने दिया प्रोग्राम भी सेस क्रूले टाइम हुई सी तो कहने प्रोग्राम सेस थे उन्हीं को अपने लोग के उदित नारायण और चित्रा लगा हुआ से ऐसे फिल्म से कोई मिल गया और तो गीत लगे हुए से इब्राहिम और म्यूजिक दिया हुए से राजेश रोशन और तो गीत लग रहे प्रोग्राम तो सेस क्रिया हो बो किंतु हम वही 10 बजे 20 मिनट वालों के अपनी गान होने हो बो वर्ल्ड न्यूज एंड तापसते वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम से 10 बजे 30 मिनट पर आरजेस चॉइस আৰু মই আকৌ আপুনি এখানকে লগ কৰি আহিব 11:30 11:30 উইথ মোৰ হিন্দী ফিল্ম চংছ দেট ইজ এছ এম এছ ৰিকুৱেষ্ট প্ৰগ্ৰাম আছে আপোনাৰ খান লগা পচন্দ গানা তো এইটো টাইমতে আকৌ লগ কৰি আহিব চ' ষ্টে ছেফ এণ্ড লেটছ মিট এগেইন এট 11:30

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने

0: खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है, आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामनाएं।
1: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: और ये आकाशवाणी है और आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन में मैं आपके साथ बबीता त्रिपाठी। और रेनबो हेल्पलाइन में हमेशा की तरह कुछ खास होता है और आज क्या खास है आपको बताऊंगी बस थोड़ी ही देर में। आपको कहीं नहीं जाना, ऐसे ही सुनते रहना है आकाशवाणी रेनबो। फिलहाल आपको बता दूं कि रेनबो हेल्पलाइन में हमेशा की तरह हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, वो आ चुकी हैं और आज का जो टॉपिक है मैं पहले ही बता चुकी हूं, लेकिन उस टॉपिक पर और बात करेंगे बस थोड़ी देर बाद। पहले ये गाना सुनते हैं।

0: रेनबो हेल्पलाइन सुन रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी। और जैसा कि मैंने बताया कि रेनबो हेल्पलाइन में हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ी हैं, तो आप सबको जानना होगा कि किसी खास टॉपिक पर, किसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमेशा की तरह। तो आज का मुद्दा हम सब से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई आपदा आती है तो हम कितने तैयार होते हैं, नागरिकों की तैयारी कितनी होती है और उसकी ताकत कितनी होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप सब भी अपनी राय जरूर रखिएगा। आज बात कर रहे हैं डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटीज पर, द पावर ऑफ प्रिपेयर्ड सिटीजंस पर। यस, हमारे साथ एक्सपर्ट इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ी हैं, मेंबर हैं एनडीएमए में, और वो हैं मिस रीता मिसल। तो रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। ये मेरी सौभाग्य है आज आकाशवाणी की 90th बर्थडे में इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, और आपदा के बारे में और नागरिक की सुरक्षा के बारे में बात करने के लिए बुलाने के बहुत धन्यवाद।
0: तो मैम, बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, क्योंकि जब आपदा आती है तो बताकर नहीं आती, खासतौर से प्राकृतिक आपदा की हम बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह की होती हैं और क्या तैयारी हम कर सकते हैं, जैसे तमाम बातें हैं जो हमारे दिमाग में होती हैं, हम इनके बारे में कई बार सोचते भी नहीं हैं, और सोचना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ सोचना बल्कि अपने लोगों में बात करना भी, अपनी कम्युनिटी में अपनी बात रखना भी ज़रूरी है ताकि हम तैयार रह सकें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो रीता जी बताने वाली हैं। लेकिन आप क्या कहने वाले हैं, आपके सवाल क्या हैं, आप बता सकते हैं 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करके, या फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 9868107070 ये है हमारे नंबर, 9868107070। तो सबसे पहले रीता जी से पूछते हैं इस टॉपिक के बारे में, आपदा प्रतिरोधी समुदाय होते कौन है और आज का जो ये विषय है इसका महत्व क्या है।
1: देखिए, भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ आबादी में रहते हैं, जिसमें हमारे एक साइड में इंडियन ओशन है, दूसरी साइड में अरेबियन सी रहता है, फिर उसके बाद हिमालय है, और हिमालय के जितने प्रदेश है अराउंड 8 states, 9 states सब हिमालय में रहते हैं। तो ये तो होना ही है कि आपदा ज़रूर होगा, लेकिन ये नहीं कि आपदा होने से वो बड़ी एक डिज़ास्टर बन जाती है, क्योंकि जब तक हमारी घरों और जब तक हमारी रास्ते, जब तक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड हो, तब तक आपदा की कोई भय नहीं। अगर हम लोग रॉन्ग जगह में रहते हैं, अब लोग हम लोग रिवर की फ्रंट में रहते हैं, अगर हम लोग हिल स्लोप में रहते हैं, तो तभी आपदा को हमको डरना है।

0: नहीं तो नहीं डरना है, क्योंकि जब तक हमारी शक्ति सामर्थ हो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने लाइवलीहुड को सेव करने के लिए, तब तक आपका कोई भय नहीं है।
1: ओके, तो आपने कहा कि आपदा की भय नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन जो जिस समुदाय की बात कर रहे हैं, जिस तरह से सिटीजन्स की बात कर रहे हैं कि उनको तैयार रहना चाहिए, तो ये किस तरह के सिटीजन्स होते हैं उनको, मतलब जो हम ही लोगों में से एक होते हैं, या फिर कुछ खास वर्ग की बात आप कर रही हैं जिनको इस तरह की तैयारी करनी है, और किस तरह की तैयारी करनी है उस पर आते हैं?
0: नो, वो तो आपने सही कहा कि हमारे लोगों में बहुत सारे लोग हैं जिसके इतने शक्ति सामर्थ्य नहीं हैं। वो है लोग जो बिल्कुल रिवर फ्रंट में रहते हैं, या कच्चे घरों में रहते हैं, या उनका दूसरा कोई तरीका नहीं इनकम करने का, वो जाके बाहर माइग्रेंट लेबर करते हैं, सिटीज़ में झुगड़ी झोपड़ी में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं। वो सब लोग बहुत ही मतलब वनरेबल जिसको बोलते हैं, जिसके पास कोई शक्ति सामर्थ्य ना हो अपने रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए, वो लोग बहुत वल्नरेबल हो, चाहे वो हीट वेव हो, या बाढ़ में हो, या साइक्लोन में हो, या भूकंप में हो। ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए, और सरकार को भी, अपने आप को भी, नागरिक लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि इन लोगों को कैसे सुरक्षा होके रहे उस हाजार्ड से बचने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
1: मैम, जरूरी क्यों है नागरिकों की, किसी भी प्राकृतिक आपदा से अगर निपटना है नागरिकों को, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आम नागरिक तैयार रहे। क्यों तैयार रहे, मतलब हम कई बार भरोसे रहते हैं कि गवर्नमेंट तो है, वो करेगी, उनका काम है ये सब करना, तो सबसे ज्यादा आपको क्यों जरूरी लगता है कि आम नागरिकों को पहले तैयार रहना है?
0: इसीलिए कि आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपने परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात है, सरकार को पहुंचने में भी थोड़ी देर लगती है वहाँ, तो अपने खुद के सुरक्षा लेके आपको पहले से ही एक्शन लेना चाहिए। ये हजार डिजास्टर होने के बाद नहीं, उससे पहले लेना चाहिए। जैसे कि मैं कल उड़ीसा में थे, उड़ीसा में काल बैसाखी का एक दिन में सडन एक स्टॉर्म आया, और रास्ते में से बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ गिर गए, और पेड़ गिरने के बाद वहाँ तो ट्रैफिक इतनी जम गई कि आने तक वो रेस्क्यू सर्विसेज बहुत देर हो गई। तो लोकल जो नागरिक थे, लोकल यूथ जो थे, वो ही लोग जाके अपने घरों से इंस्ट्रूमेंट्स लाके वो रोड्स को क्लियर करे। तो ये आम जनता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते, ये सब काम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सरकार अकेले नहीं कर सकती। हर हजार्ड में, हर डिजास्टर में सबका इसमें एक रोल निभाना होता है, और उसी रोल एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की भी होती है कि वो भी प्रिपेयर रहे एक कोई भी डिजास्टर में, पहले अपना, अपने सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के सुरक्षा के लिए, अपनी कम्युनिटी के सुरक्षा के लिए, फिर आम जनता की सुरक्षा के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तो हमारी बड़ी एक एनडीएमए की एक बहुत बड़ी बड़ी प्रयास है, जो हमने एक बड़ा प्रोग्राम रखा है आपदा मित्र करके, जिसमें 3 लाख अभी तक वॉलंटियर रहे हैं। उस वॉलंटियर्स गांव में काम करते हैं, गांव में ट्रेनिंग लेते हैं, अपने गांव लोगों को वो लेटली हेल्प करते हैं जब डिजास्टर होती है। तो ये सबसे हमारी स्ट्रेंथ है कि अपने लिए, अपने लोगों को काम करना, इसीलिए कम्युनिटी, कम्युनिटी वॉलंटियरिज्म प्रमोट करते हैं बहुत एनडीएमए।
1: बिल्कुल, हमें ये तो आप समझ में आ गया कि किस तरह से आम जनता अगर जागरूक रहेगी, तैयार रहेगी, तो अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा वो अपने लेवल पर काफी हद तक कर सकती है, लेकिन वो किस तरह की तैयारी करें उस पर हम बात करेंगे। मैं सोच रही हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और लौट कर आते हैं कि आम नागरिकों को किस तरह से तैयार रहना है, अपने लेवल की किस तरह की तैयारियां हैं वो कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस बीच आप सबके सवाल भी आने चाहिए, आपको अगर कुछ पूछना है तो फटाफट नंबर्स डायल कीजिए, या तो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉल करने के लिए ये नंबर्स हैं 2342-1080 या 2342-1084, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 इन नंबर से पहले जरूर लगाइए, और अगर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो फटाफट अपना सवाल लिखिए, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए और भेज दीजिए इस नंबर पर 9868107070 9868107070। रेनबो हेल्पलाइन में आपके साथ हूं मैं, बबीता त्रिपाठी, और मेरे साथ मिस रीता मिस्सल, मेंबर एनडीएमए, जो आज बात कर रही हैं डिजास्टर रेजिलियंट कम्युनिटीज पर, द पावर ऑफ प्रिपेयर्ड सिटीजंस। इस पर हम और चर्चा करेंगे बस थोड़ी ही देर में, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।
2: ते चक

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: आकाशवाणी रेनबो और रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है शो. आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी. मेरे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट मिस रीता मिसल जो कि एनडीएमए में मेंबर हैं, और आज हम बात कर रहे हैं डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटीज द पावर ऑफ प्रिपेयर्ड सिटीजन्स पर, यानी आपदा प्रतिरोधी समुदाय, नागरिकों की तैयारी की ताकत. यानी नागरिक तैयार रहें तो किस तरह से किसी भी आपदा से हम निपट सकते हैं मजबूत तरीके से. आप सबके सवाल भी आ रहे हैं, और अगर अभी तक आपके दिमाग में कोई सवाल है और आपने नहीं पहुंचाया है तो आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए. कॉल करने के लिए आपको ये नंबर्स डायल करने 2342 1080 या 2342 1084. व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 9868107070. वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस आने भी शुरू हो गए हैं और मुझे लगता है मेरे सवालों की फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबके बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं जो मेरे पास एक लिस्ट आई है. मुझे लगता है इससे तो पूरा का पूरा शो कंप्लीट हो जाएगा. एक सवालों की लिस्ट आई हुई है मेरे पास, लेकिन नाम के सिवा उन्होंने कहाँ से लिखा ये नहीं लिखा. कोई बात नहीं, अनिंदिता सिन्हा की बात कर रही हूँ. इन्होंने पहला जो सवाल किया है जिस पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा और गाइड करें. इन्होंने लिखा है, व्हाट डज द टर्म डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटी मीन एंड व्हाई इज कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस इम्पॉर्टेंट बिफोर अ डिजास्टर अकर. तो इस पर मैम कुछ कहिएगा प्लीज, छोटा सा, क्योंकि आप ऑलरेडी बता चुके हैं. फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनकी जो सवालों की लिस्ट है वो बहुत लंबी है.
1: थैंक यू अनिंदिता वो प्रश्न के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है
0: जी.
1: एक बात बोलनी है, डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटी की, डिजास्टर रेजिलिएंट हाउसहोल्ड जो बोलते हैं उसको एक बात माननी है कि मेरी फर्स्ट होनी चाहिए उनकी अपनी घर जो रहते हैं, घरों को सुरक्षित होना चाहिए, चाहे ये भूकंप से, चाहे ये साइक्लोन से, चाहे ये फ्लड से, बाढ़ से. ये सारी हाउसेस जो अपनी अगर एक शेल्टर खुद हो जाएगी अपने आप में कोई भी डिजास्टर से, तब तो एक रेजिलियंस की वो मार्क हो सकती है. दूसरी बात है कि आपकी अपने जो जीविका है उस जीविका को जैसे भी किसी भी डिजास्टर में जैसे वो रुक ना जाए. जैसे जो आम आदमी काम करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में, अगर बाढ़ आए तो उनकी तो उस समय तो बहुत डिसरप्ट हो जाती है उनकी लाइवलीहुड्स. लेकिन अगर कोई नौकरी करते हैं तो यू नो लाइवलीहुड्स रहता है, वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं डिजास्टर के बाद. इसलिए लाइवलीहुड्स भी अपनी ऐसी होनी चाहिए जहाँ वो सुरक्षित हो और डिजास्टर उसको डिसरप्ट ना करे. तीसरी ये बात है, अपने जितने सारे घरों के परिवार, शायद वो एजेड लोग हों, डिसेबल लोग हों, विमेन हों, उनके भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनके भी सुरक्षित होने चाहिए. अगर बाढ़ आए तो उनको हाई ग्राउंड में ले जाए, अगर भूकंप होए ठीक जगह में आप उनको सुरक्षित जगह में रख सके, ये एक बात भी रखनी चाहिए मन में. तीसरी चौथी बात यह है कि आप भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस भी अपने लिए कर सकते हैं. लाइफ इंश्योरेंस करेंगे, अपने जितने एसेट्स से इंश्योरेंस करेंगे. भारतवर्ष में हाउस इंश्योरेंस बहुत कम होती है, एक बड़ी इंश्योरेंस की बात वो भी करनी चाहिए. ये तीन चार विषय करने से हम अपने आप को, अपने परिवार को रेजिलियंट समझ सकते हैं.
0: तो ये तो हुई परिवार की बात, और कम्युनिटी की आपने बोला कि जिस तरह से किस तरह से डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटी का मतलब क्या होता है और किस तरह से तैयारियां कर सकते हैं. और भी तैयारियों की बात हम करेंगे, और इनका जो सवाल है उसमें इतने सारे सवाल हैं कि मैं सोच रही हूँ कि एक साथ इन सवालों को लेती हूँ, उस पर हम बात करते हैं. व्हाई इज इट सेड दैट कम्युनिटीज आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ड्यूरिंग एनी डिजास्टर. एक लाइन में
1: मैंने तो अभी उड़ीसा की एग्जांपल मैंने बताया कि देखिए, जब तक एक इमीडिएट इंसिडेंट होती है, जैसे स्टॉर्म होती है कि फ्लैश फ्लडिंग होती है, वहां सरकार की फोर्सेस आने में थोड़ी देर टाइम लगती है.
0: तो
1: इसीलिए सामने जो रहते हैं लोग इमीडिएटली विसिनिटी में, जो वो लोग अवेयर होकर इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करते हैं, उसलिए कम्युनिटी को फर्स्ट रेस्पॉन्डर बोला जाता है. और यही हमारी उम्मीद है कि हमारी ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर लिस्ट बहुत बढ़ जाए भारतवर्ष में, ताकि हम और सुरक्षित हो सके.
0: जी, तो एक सवाल इन्होंने और लिखा है कि हाउ कैन कम्युनिटीज प्रिपेयर वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज चिल्ड्रन, एल्डरली पर्संस विद डिसेबिलिटीज एंड प्रेग्नेंट वुमेन.
1: बहुत अच्छी सवाल है. एक तो हम लोग भारतवर्ष में बहुत ही मशहूर है हम लोगों की कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस जो बोलते हैं. कम्युनिटी एक डिजास्टर पहले अपने कम्युनिटीज में क्या क्या आपदा आते हैं उसको एक लिस्ट बनाते हैं, उसके तहत एक प्लान बनाते हैं कि इस प्लान में कौन क्या करेगा आपदा आने से. ये रोल सब बंटा जाता है अपने कम्युनिटीज में, यूथ को देते हैं सर्च एंड रेस्क्यू की काम, किसी और एक ग्रुप को देते हैं, यूथ ग्रुप को देते हैं मेडिकल फर्स्ट एड की काम, किसी और को देते हैं शेल्टर जब जाते हैं उसको वहाँ काम करने के लिए। ऐसे करके हम अपने कम्युनिटी प्लान जब बनाते हैं तो जो लोग सब रहते हैं जिसको आप वल्नरेबल ग्रुप करते हैं, जो हमारी डिसेबल्ड है, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, जो लैक्टेटिंग वीमेन है, और जो एजड है, वृद्ध सब, उनके एक लिस्ट बनाया जाता है कम्युनिटी प्लान में। और लिस्ट के हिसाब से जब अर्ली वार्निंग आती है, जब आईएमडी की जब सूची आती है कि बाढ़ आने वाली है, ये साइक्लोन आनी, तूफान आने वाली है, इन्हीं लोगों को पहले ध्यान देते ये कम्युनिटी उनको ले जाती है पहले साइक्लोन शेल्टर में, ताकि वो सुरक्षित हो और उनकी जो स्पेशल नीड्स है स्पेशल नीड्स को अटेंड करने के लिए उनकी मेडिसिन चाहिए हो, उनकी जो पौष्टिक खाना जो बच्चों के लिए होना चाहिए वो सब तैयार करके रखते हैं साइक्लोन शेल्टर में, ताकि कम्युनिटी उनको अटेंड कर सके। तो इसी तरफ से हमारी वेनरेबल कम्युनिटीज जो हैं उनके ध्यान बहुत देते हैं, ताकि बाढ़ में उनकी जो सुरक्षा ज़्यादा हो सके।
0: तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें पहले से लेने चाहिए? जो
1: तो इनकी जो लिस्ट है सब वनरेबल फैमिलीज की, वनरेबल लोग की, आप चाहे आपके हेल्थ वर्कर को दे सकते हैं, वो गवर्नमेंट में लिस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि उनका ध्यान होना चाहिए कि आपदा के बाद उनकी क्या सर्विस चाहिए, क्या मेडिसिन लेते हैं। कभी कभी लोग होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, उनकी भी मेडिसिन चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चाहिए। ये सब पहले से ही तैयार करके आपकी आशा वर्कर हो या आंगनवाड़ी वर्कर हो, इन सबको लिस्ट देना चाहिए और लिस्ट आपके पास में रहना चाहिए। इनकी जो सामग्री जो चाहिए होगी बाढ़ होने के बाद या आपदा होने के बाद, उनको पहले से ही पहुंचाने के और स्टॉक पाइल करके रखना होता है, पहले से ही स्टॉक पाइल, राशन स्टॉक पाइल करके रखते हैं, मेडिसिन स्टॉक पाइल करके रखते हैं, एसिस्टिव डिवाइस स्टॉक पाइल रखते हैं, वो एक बात करते हैं। फिर बीच बीच में कम्युनिटीज एक साथ होकर एक मॉक ड्रिल करते हैं, मॉक ड्रिल कहते हैं, जिसमें वो सिनेरियो बेस्ड एक प्लानिंग करते हैं, जिसमें जितने वल्नरेबल लोग हैं उनको लेके उन लोग एक प्लान करते हैं, उनको कैसे इवैक्यूएट करें, समय पर उनको कैसे घर से बाहर निकाल के उनको साइक्लोन शेल्टर में या किसी भी अच्छे बिल्डिंग में पहुंचाए जहां की बाढ़ या साइक्लोन की इफेक्ट ना पड़े उनके ऊपर। यही स्टेप्स पहले ही से लेना है और कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयरनेस प्लान पहले से ही तैयार करना है, उसका एक टेम्पलेट दिया हुआ है एनडीएमए की तरफ से और राज्यों इसको करते हैं और आप भी उसमें शामिल हो जाइए।
0: एक सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल से एक मैसेज कर रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि जब ये 6th फ्लोर पे

0: रात में जब सोते हैं तो भूमि कंपन होता है, तो इस टाइम इनको क्या करना चाहिए?
1: देखिए, भूमिकंपन जो जब होता है, आप 3 स्टेप्स लेते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉप, कवर और होल्ड। मतलब आपको ऐसे एक स्टडी, बहुत ही मजबूत वाला बिस्तर या टेबल के नीचे आपको जाके अपने सर को ढक करके उसके नीचे रहना है जब तक शेकिंग बंद ना हो जाए। ये
0: अच्छा
1: अपने घर में आप कर सके। आप प्लीज अपने घर में जितने सारे सामान हैं जो गिर सकती है उसको कैसे सिक्योर किया जाए, आप अगर जानते हैं, भूकंप एरिया में आप रहती हैं, तो प्लीज उसको कीजिए पहले, क्योंकि ये ही आपकी इंजरी के कारण हो सकती है। तो और इमीडिएटली जितने इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है उसको निकाल दें ताकि फायर की कोई गुंजाइश ना हो। आपकी जो अपनी सुरक्षा के लिए मैंने बोला, कोई भी एक बड़ी मजबूत सा टेबल या बड़ा सा बेड के नीचे जाए और उसको अपने सर के ढक के वहां रुके जब तक आपकी शेकिंग कम ना हो जाए। दैट इज
0: कभी
1: वेरी
0: भी कोई
1: इंपॉर्टेंट।
0: भी अगर भूकंप के लिए भूकंप के झटके महसूस करें तो क्या अपने घर में, जैसे आपने कहा कि इस तरह से हम किसी भी चीज के नीचे जाकर बैठ सकते
1: यस,
0: हैं, लेकिन क्या जिस देखने को क्या मिलता है कि कभी भी झटके थोड़े से शुरू हुए तो सारे लोग बिल्डिंग से नीचे उतर आते हैं
1: जी,
0: और वो उतरने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो वो सही है या इस तरह से अपने घर में ही कोई जगह ढूंढ के
1: देखिए,
0: रुकना?
1: ये 6वीं फ्लोर में रहते हैं, कभी कभी लोग 10वीं फ्लोर, 18 फ्लोर से,
0: हाँ,
1: तब से
0: सोसाइटीज
1: नीचे
0: में, हाई राइज
1: बहुत हाई
0: सोसाइटीज में,
1: राइजेस है,
0: और वो
1: हाई
0: नीचे
1: राइजेस
0: उतरते
1: में
0: हैं।
1: नीचे उतरने से एक टाइम बहुत ही मुश्किल है। अगर पीपल को प्रैक्टिस नहीं है 18वां मंजिल से कैसे नीचे आए, तो वो जल्दी भी नहीं आ सकते। आप कोई अगर ओल्ड हो वहाँ, वो कैसे आएंगे? इसीलिए अगर आप जानते हैं भूकंप एरिया में आप रहते हैं, प्लीज ऐसे एक पहले से प्रिपेयर कीजिए, एक स्टडी जो फर्नीचर आपकी हो उसके नीचे जाने के लिए। हम लोग स्कूल में ऐसा एक्सरसाइज करते हैं बच्चों को टेबल के नीचे जाने के लिए, वैसे एक्सरसाइज घर में करें। और सबसे बड़ी प्रिपेयर्डनेस हो सकती है कि आपकी जितने फर्नीचर है जो गिरने की संभावना है उसको कैसे आप बांध करके रख सकते हैं। यू हमारे देश में इतने कॉमन नहीं है, लेकिन जापान जैसे देश में भूकंप होते ही रहते हैं और
0: अच्छा
1: उसी में मैंडेटरी है। और प्रिपेयरनेस के लिए आप प्लीज बिल्डिंग कोड्स जो है इंडिया के, वो बिल्डिंग कोड्स के अनुसार अपने घर बनाएं। और जब घर खरीदते हैं, हम लोग अपार्टमेंट्स खरीदते हैं, आप पहले से ही पूछ लीजिए बिल्डर से, आपकी अर्थक्वेक साइस्मिक कोड्स जो इंडिया में है उसको फॉलो करके आपने घर बनाया कि नहीं। अगर
0: अच्छा
1: वो बनाए हैं तो वो तो अच्छी बात है, कुछ होनी नहीं चाहिए एटलीस्ट 7 पॉइंट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक तक।
0: ओके। राजेश कुमार चौहान जालंधर से बोल रहे हैं। पिछले कुछ सालों से देश के पहाड़ी इलाकों में बरसात से बहुत घर धराशायी हो रहे हैं, भवन धराशायी हो रहे हैं, इसके लिए आम लोगों को क्या करना चाहिए?
1: तो सबसे पहली बात ये है कि आम लोगों को जानना चाहिए कहाँ रहते हैं, क्या वहाँ नदी के किनारे रहते हैं जहाँ बाढ़ होने की संभावना है, जहाँ से भूकलन हो सकती है, वहाँ रहने से। तो हमने देखे हैं हिमाचल एरिया में, उत्तराखंड एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे रास्ते के ऊपर रहते हैं, हिल की स्लोप लेते हैं, 45 डिग्री इंक्लाइन के में घर बना लेते हैं। ऐसी जगह में घर बनाने थे तो जैसे भी किसी भी बाढ़ आएगा, ये भूकलन आएगा, जरूर वो घर टल जाएगा और निकल जाए वो, इसीलिए वो एक करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप अपने घरों जगह में जितने सारे पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगलों हैं, उसको ना काटें, क्योंकि जितने आप पेड़ और जंगलों को काटते हैं उतनी वो सॉइल लूज हो जाती है और थोड़ी सी बारिश में वो सब नीचे आ जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आम नागरिक की बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है कि कैसे हम प्रिवेंट करें कि पेड़ पौधा सुरक्षित रखें और भी प्लांट करें।
0: ओके, एक सवाल आ रहा है हमारे लिसनर का, बात करते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश शिमला से।
0: जी राकेश जी, बताइए आपका सवाल क्या है?
2: जी, मेरा सवाल ये है, अगर जैसे कि बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं, अगर स्कूल में स्थिति बाढ़ की आ जाती है तो उनको, उन बच्चों को किस तरह से जो है तैयार किया जाता है, किस तरह से बचाया जाता है, मेरा ये सवाल है।
0: जी सुनिए
1: जी, बच्चे अगर स्कूल में हो, स्कूल का एक स्कूल तैयारी एक प्रिपेयरनेस प्लान होती है फ्लड के लिए। आपके जो टीचर्स हैं आपके स्कूल करिकुलम में बाढ़ के बारे में बोलते हैं और स्कूल में वो लेसन में अपने होते हैं। एक बात होती है कि स्कूल टीचर की वहाँ जिम्मेवारी होनी चाहिए सब सारे बच्चों को एक साथ रखने के लिए, जबकि अपनी पेरेंट्स ना आए तब तक अपने साथ रखें और उसकी व्यवस्था उनके खाने पीने का रहने का व्यवस्था करें। हालांकि हमारी स्कूल बिल्डिंग्स मोर और लेस सब बहुत ही अच्छे इमारत है, स्कूल बिल्डिंग्स बाढ़ में नहीं कुछ नहीं होती है, जब भूकलन होती है तब तो जब थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पानी नीचे आ जाती है, लेकिन बाढ़ के लिए बिल्डिंग का कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए वो स्कूल में रहे, टीचर के साथ रहे, टीचर की इंस्ट्रक्शन सुने और बाकी वो सुरक्षित वहीं रहेंगे और वहाँ बाढ़ के पानी में निकलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। वो लोग सोच रहे होंगे तो कम पानी है हम घर चले जाएंगे, वैसे नहीं है, पानी की गति तेज होती है और बच्चे फिसल जाएंगे, इसीलिए स्कूल से बाहर उस कंपाउंड से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
0: तो इस पर हम और चर्चा करेंगे, सरकार भी बहुत सारे स्टेप्स है जो ले रही है और क्या उनके बारे में आपको पता है, किस तरह से उसका फायदा आप उठा सकते हैं, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है जिस पर हम तुरंत फोन करके किसी भी आपदा की जानकारी दे सकते हैं? अगर ये सब भी आप जान जाएंगे तो और प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस सुनते रहना इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो, रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है। इस वक्त हम मिस रीता मिसल जो कि मेंबर एनडीएमए है वो बता रही हैं कि आपदा प्रतिरोधी जो समुदाय है, नागरिकों की तैयारी की ताकत है उसके बारे में। तो आप अपने सवाल कब बताएंगे, अपने सवाल अभी लेकर आइए 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करके अपना सवाल इन तक पहुंचाइए या फिर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पूछ डालिए 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप करने का नंबर, तो फटाफट इस नंबर का लाभ उठाइए। सुनते रहिए रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ मैं बबीता त्रिपाठी।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा?
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी और शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। आज हम डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटीज, द पावर ऑफ प्रिपेयर्ड सिटीजंस पर बात कर रहे हैं। मिस रीता मिसल, मेंबर NDMA हमारे साथ हैं। तो हम बहुत सारी ऑलरेडी बातें कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारी बातें रह भी गई हैं जो हम चाह रहे हैं कि आप सबके मैसेजेस के जरिए जो आई हैं एटलीस्ट वो बिल्कुल ना छूटें। पैंथर तोमर बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं, उनमें से एक है।

0: आकाशीय बिजली भी एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है। इस आपदा के खतरों से सुरक्षित बचने के लिए आम नागरिकों को कौन से व्यावहारिक उपाय अपनाने चाहिए? जी मैम,
1: थैंक यू। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइटनिंग अभी एक इंडिया की नोटिफाइड डिज़ास्टर है। नोटिफाइड डिज़ास्टर के मतलब इसमें राहत भी गवर्नमेंट दे सकती है, अगर लाइटनिंग से स्ट्राइक हो फैमोस की दे सकती है। अपनी लेवल में आप क्या करें कि जब लाइटनिंग आए आप दया प्लीज़ जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उससे दूर रहे, उसको अनप्लग कर दे पहले। घर में अगर होंगे तो अनप्लग करें सारे इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर हो, टेलीविजन हो, आपकी मिक्सी हो, दूसरे जिस भी अप्लायंसेस हो उसके पावर सर्ज होने के कारण यू नो खराब हो सकती है, पहले उनको अनप्लग करें। आपकी अगर कंक्रीट डोर्स है, विंडोज है, उसके पास ना जाएं, और आप अपने जो कॉर्डलेस फोन हो उसको यूज करते, लेकिन कॉर्डेड फोन हो यूज करें। अगर बाहर हो तो ये बड़ी ही मुश्किल कारण है। आप एक काम करें, अगर बाहर हो तो बहुत ही एक खुली जगह में हो तो आप देखे जहां की डिच की एक नाला हो उसके अंदर जाए और खूब अपने आप को हग करके नीचे रह जाए ताकि यू नो लाइटनिंग आपके थ्रू से ना जाए, जितने छोटे हो सके। बच्चों जैसे बैठकर पूरा बैठकर अपने हील के ऊपर बैठकर जितनी छोटे हो सके उतने क्राउच करके आप रहें। फिर उसके बाद ट्रीज के पास, बड़े बड़े पेड़ के पास ना जाए। आप सोचते होंगे बारिश हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, ट्रीज के पास जाए, नहीं। ट्रीज एक बड़ी लाइटनिंग की रॉड, नेचुरल रॉड होती है, इसीलिए पानी के पास ना जाए बिल्कुल। स्विमिंग पूल, बीचेस, पॉन्ड्स, लेक्स, इसमें से दूर चले जाए। मेटल ऑब्जेक्ट्स जो है, पावर लाइन्स, ऑफ कोर्स आप तो दूर ही रहेंगे, लेकिन हमारे तार की जो फेंसेस होते हैं उसमें से भी ज़्यादा दूर रहे। मेटल स्ट्रक्चर्स जितने हो सके उसमें से दूर रहे। और बड़े ग्रुप से अगर आप ट्रैवल करते हो प्लीज़ आप ग्रुप को सेपरेट करके सब एक जगह में ना रह के 50 फीट 100 फीट दूरी रह के आप वो क्राउचिंग की पोजीशन नीचे एकदम बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे छुपते हैं वैसे पोजीशन आप ले ले ताकि आप सेफ रहे।
0: ओके, एक सवाल इन्होंने ये भी लिखा है कि हिमालयी क्षेत्रों में जो भूस्खलन है और नदियों में आने वाली अचानक बाढ़ें हैं, ये लगातार बढ़ती क्यों जा रही हैं और इनको कम, इनके प्रभाव को कम करने के लिए आम नागरिकों को क्या करना चाहिए?
1: मैं पहली बार इस बारे में जिक्र कर चुकी हूँ कि हिमालय रीजन में आप जब घरों बनाते हैं बड़ी बड़ी स्लोप में और उसके लिए पेड़ काटते हैं, जंगलों क्लियर कर देते हैं रहने के लिए, वो सब अपने नेचुरल टॉप सॉइल जो होते हैं वो काफ़ी लूज हो जाते हैं। उसके कारण जब थोड़ी भी बारिश हो जाती है जो मिट्टी पकड़ के रखती थी ज़मीन को वो ढीला हो जाता है और सारे जितने थोड़े बारिश होने से भी वो नीचे आ जाती है। इसीलिए हमारी जो रोल है एक नागरिक की तरफ से, हमको जितने भी हो सके हम पेड़ और भी प्लांट करें, वो एक बड़ी चीज है। आप प्लीज नदी के किनारे जो पानी आ सकती है, 2 साल के आगे नहीं आई, 5 साल के आगे नहीं, ये नहीं है। नदी का कोई एक सिस्टम नहीं है कि आज इस साल में इसमें जाएगा, और एक बड़ी बैंक होती है नदी का, और उस नदी के किनारे ना रहे, घर ना करे। और तीसरी बात ये है कि आप अपनी स्लोप को, जो अपने घरों के स्लोप को आप देख के वहाँ तैयार किए, जिसमें विभिन्न तत्व होते हैं जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो स्लोप प्रोटेक्शन के भी उपाय आप देख के करें घर जब बनाएंगे अपने घर।
0: तो वो एक और इसी में से आता है कि हम अपनी तरफ से ये सारे प्रयास कर सकते हैं, और आज हम बात भी इसी बात पर कर रहे हैं कि जो आम नागरिक है वो किस तरह से तैयार रहे, लेकिन सरकार ने कई बार ऐसे कुछ चीजें बनाई हुई हैं, कुछ ऐसी बातें बोली हुई हैं जो हमें ही नहीं पता है, आम नागरिकों को नहीं पता है कि उनका फायदा कैसे उठाया जाए, या अवेयर नहीं है उनके बारे में। तो कुछ उसके बारे में भी हमें बताइए कि क्या किस तरह से सरकार की तैयारी होती है।
1: बस देखिए, जब डिजास्टर आती है, जैसे अभी बाढ़ आने वाली है, ये बाढ़ की सीजन है, जून से सितंबर तक बाढ़ आती है, उससे पहले भी सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सारे लाइन डिपार्टमेंट्स को बुला के एक प्रिपेयरनेस मीटिंग करते हैं, मॉनसून प्रिपेयरनेस मीटिंग में हर साल में ये होती है। अच्छा। और हर साल में जब ये मीटिंग होती है सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एक डायरेक्टिव होती है कि क्या करना चाहिए। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट को जितने सारे महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट है, जिनके लिए मेडिसिन तैयार करना, वैक्सीन तैयार करके रखना, उनके लिए खाना तैयार करके रखना, वह रोल है। जो CWC की रोल है उसको टाइमली वार्निंग देना है, जो डैम की रोल है पानी जब छोड़ते हैं जिसमें बाढ़ आ जाती है उसको पहले से डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट को खबर देना है कि हम इतने समय में इतने घंटे में पानी इतना छोड़ रहे हैं, आप प्लीज जो लोग रहते हैं पानी के नीचे नदी के किनारे उनको वार्निंग दीजिए। ऐसे करके सारे डिपार्टमेंट्स की एक एक रोल होती है, वो रोल के बारे में डिस्कस किया जाता है, प्रिपेयरनेस बना जाता है। और दूसरी बात है, आम नागरिक को ये जानना चाहिए कि बाढ़ होने के लिए आप अपनी मौसम विभाग की जितने सारे टीवी हो, रेडियो है, एक सचेत ऐप करके है, सचेत ऐप को डाउनलोड करके आप बाढ़ की वार्निंग सुन लीजिए। आपको 3-4 दिन से पहले ये मालूम पड़ जाता है धीरे से इतना बारिश पड़ेगा, इतनी तेज से बारिश होगी। अच्छा। और बारिश होने से क्या क्या करना चाहिए वार्निंग में सब बोला जाता है। और अभी अभी May 2nd में गवर्नमेंट ने एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल जो SMS मैसेजेस थे सारे नागरिकों को मैसेज जाते हैं कि किस क्षेत्र में बाढ़ होने आने वाली है, कितनी तेज से बारिश आने वाली है और उसके लिए क्या तैयारी करने वाले, उस कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल सचेत ऐप से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और टाइमली आपको अगर वार्निंग मिल जाए तो आपके लिए जो स्टेप्स लेना है वो कर सकते हैं।
0: बहुत सारे सवाल के बीच में एक जो सवाल है वो मैं अभी छेड़ रही हूँ, टाइम बहुत कम है लेकिन इम्पोर्टेंट लग रहा है। पैंथर तोमर का ही सवाल है, किशनगंज दिल्ली से, इन्होंने लिखा है कि एक आम नागरिक अपने मौजूदा पुराने घर को कम बजट में ग्रीन होम में कैसे बदल सकता है और इस तरह से इसकी मदद से ग्लोबल वार्मिंग कैसे रोक सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में ग्रीन होम्स को के ऊर्जा प्रबंधन को पूरी तरह से नियंत्रित क्या कर सकता है।
1: पहली सवाल तो ये अच्छी बात सुनकर अच्छा लगा कि आपका पुराना घर है। मैं समझ रही हूँ पुराना घर का मतलब है आपके घर में वेंटिलेटर स्काईलाइट है जो आजकल के अपार्टमेंट्स में नहीं होते हैं और बड़े बड़े घर, बड़े बड़े दीवार होते हैं, बड़ी ऊंची घर होते हैं, इसीलिए वो हीट ज्यादा नियंत्रण करता है, गर्मी नियंत्रण ज्यादा करती है, वो एक बात। दूसरी बात है आपको आपकी कूल रूफिंग की जो पैसिव मेथड है कूल रूफिंग की, वो एक पेंट मिलती है, वाइट पेंट जो मिलती है, वाइट पेंट सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर लेती है और उसमें से 3-4 डिग्री अपने घर में कम हो जाता है एंड इट इज नॉट, बहुत सारा पैसा नहीं लगता उसमें, वो दूसरी एक है। तीसरी है आपके जितने सारे पहले से घर में जो जाली का विंडोज था उसको और इंक्रीज कर सकते हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, ये तीसरी पैसिव कूलिंग के है। और फिर आप अगर चाहें तो एक इंजीनियर से बात करके घर को रेट्रोफिट कर सकते हैं, हीट के लिए भी रेट्रोफिट कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी हम लोग ये सब पैसिव कूलिंग मेथड्स कर सके। और फिर उसके बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाईली डिपेंडेंट होते हैं डेटा, आप अगर अच्छे से डेटा फीड कर सके तो ग्लोबल लेवल में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मॉडलिंग करके दिखा सकती है कि क्या क्या करना चाहिए कूलिंग के लिए, ग्रीन हाउसेस को कैसे बदलाव लाए। फिर अपने घर में भी आप जो रूफ गार्डनिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रीज रखने से टेम्परेचर कम हो जाती है तो रूफ गार्डनिंग भी एक प्रयास होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने खुद के वाटर स्कैसिटी को डील करने के लिए भी एक ग्रीनिंग की एक स्टेप होती है। ये स्टेप लेने से आपकी कूलिंग हो जाएगी अपने घर में, 4-5 डिग्री तो कम से कम हो जाएगी
0: जी। हेल्पलाइन नंबर हम बात कर रहे थे, कोई हेल्पलाइन इमरजेंसी में कोई नंबर घुमाना हो,
1: 118 नंबर जो हमारी है सरकारी नंबर थी 118, सारे स्टेट में, सारे राज्य में, सॉरी इट्स 112, सारे राज्य में 112 नंबर में यूज करके, इस्तेमाल करके आप हेल्पलाइन में रीच सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी में स्टेट्स में कॉल करने से वे किसी भी डिजास्टर में आपकी वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं।
0: समय बहुत कम है, चलते चलते 2-3 पॉइंट्स में क्या कहना चाहेंगी?
1: बस एक है कि नागरिक को अवेयर करना चाहिए, ये हजार्ड इतनी बढ़ गई है और ये आधे कारण इसके है कि हम अपने आप को जागरूक नहीं करते, हम रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी नहीं कर सकते, हम प्लांट्स को जितने हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम हमारे लेवल में बहुत सारे चीज है, जैसे प्लास्टिक को अवॉइड करें, बहुत सारी चीज हो हम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को नियंत्रण करने के लिए और उस सब चीज करने से। और मैं आपको भी विनती करूंगी कि आप एक आपदा मित्र बने, वात्रा मित्र बनने से आप भी शामिल हो सकेंगे इस एफर्ट्स के, सरकार की एफर्ट्स में। आपको हम लोग ट्रेनिंग देंगे आपदा की तहत में कैसे आप सबके सहायता कर सकते हैं। अच्छा। और वो हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात होगी, जब 3 लाख केवल नहीं, हमारी आबादी तो 140 करोड़ है, कम से कम 5 लाख 10 लाख उससे ज्यादा भी हो सके। जो अपनी स्किल्स अपनी कैपेसिटीज उसी में वॉलंटियर कीजिए, ये सबसे अच्छी बात हो सकती है।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आपने जिस तरह से बताया कि लोगों में आनी चाहिए और ज़रूर इसका लाभ लोगों को मिलने वाला है और बहुत अच्छे से। और इतने सारे सवाल अभी भी रह गए हैं, लेकिन क्या करें, समय की बाउंडेशन है, फिर कभी इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। मिस रीता मिसल मेंबर NDMA स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो आज हमने बात की आपदा प्रतिरोधी समुदाय नागरिकों की तैयारी की ताकत पर मिस रीता मिसल से, जो कि है मेंबर NDMA में। फिलहाल मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी आपको इजाजत देनी होगी क्योंकि माला आ गई है आशियाना लेकर। अभी चलती हूँ, जल्दी लौट कर आऊंगी। ध्यान रखिए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

वो कहते हैं ना कि हम जिस बात का एहसास अपने मन में कर लेते हैं ना, वो हमारे साथ साक्षात तौर पर होने लगता है। प्रोग्राम आशियाना की शुरुआत आज इस भीगे भागे गाने के साथ, क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी धूप है कि पसीने छूट रहे हैं, और ऐसे में जब पसीने छूटते हैं ना, तो वो जो नमी वाला एहसास जो पसीने के रूप में आपके शरीर से बाहर आ रहा होता है, वो कहीं ना कहीं आपको इस बात की दुआ मांगने को मजबूर करता है कि हे भगवान, बरसा दे बादल और कुछ शरीर को ठंडक पहुंचा दे। तो इसीलिए ये गाना आपको डेडिकेट किया आज मैंने, ताकि आपको कुछ कुछ ठंडक का एहसास हो, और क्या पता बारिश भी हो जाए। आज प्रोग्राम आशियाना में आज हम बात करेंगे उन फैमिली रिलेटेड इश्यूज को लेकर जो अक्सर हमारे सामने आते हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम पेरेंटिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लेकर हम इतने सेंसिटिव, इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि कई बार बहुत ज़रूरी काम करना भी भूल जाते हैं। कौन से हैं वो ज़रूरी काम, और क्या है वो ज़रूरी टिप्स जो आपको ध्यान रखना है अपनी एक बेहतरीन पेरेंटिंग को सक्सेसफुल रूप में समाज के सामने लाने के लिए, आपको बताऊंगी। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला, और आप सुन रहे हैं मुझे आकाशवाणी रेनबो पर।

0: तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर, ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
7: पता का चाय, गजब का स्वाद।
8: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
9: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
8: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
10: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो पर आप है मेरे यानी मस्त मस्त आरजे माला के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। जरा याद कीजिए आज से 25, 30 या फिर 35 साल पहले की बात, जब हम बच्चे हुआ करते थे या जब हम अपने सामने बच्चों को देखा करते थे, अपने साथ के लोगों के साथ अपने बच्चों को हम इस तरह से जब ढूंढते हैं, देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उस ज़माने के बच्चे और इस ज़माने के बच्चों में बहुत फ़र्क है। और ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम ये सोच लेते हैं कि फ़र्क है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर है, क्यों है और उसमें किस तरह के बदलावों की ज़रूरत है, इसके बारे में या तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सोच नहीं पाते या फिर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस ज़माने में हम बच्चे हुआ करते थे, उस ज़माने में हमें ये कहा जाता था कि पढ़ाई पर ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई करो और उसके अलावा बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं है, क्योंकि स्किल्स के बिना आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में अब एक कदम भी नहीं सोच सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो यानी कि आपके पास कोई ऐसा सेकेंडरी करियर नहीं है जिसको लेकर आप सोच सकें कि आपका फ्यूचर किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। परेशानियाँ, स्ट्रगल्स हर प्रोफेशन में है, हर जगह है, हर किसी की लाइफ में है। लेकिन जब हम स्ट्रगल करते हैं तो क्या उस समय हम अपना प्लान बी पहले से सोच कर रखते हैं, या जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब सोचते हैं कि अब प्लान बी क्या है? तो मेरा तो कहना यह है, अगर हम बात करते हैं स्किल्स के बारे में, पढ़ाई के साथ साथ वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उन स्किल्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनसे ये कहा जाए कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर आप घर पर हैं तो आप कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आपके बॉडी में भी फ्रेशनेस रहे, स्फूर्ति रहे, और साथ ही साथ आपका माइंड पढ़ाई से हटके बाकी चीज़ों को लेकर, समाज व्यवस्था को लेकर, समाज में चल रही चीज़ों को लेकर, या समाज में रहने वाले, मेंटेन होने वाले एटिकेट्स के बारे में भी आप जाने, सीखें और उनके लिए कोशिश करें। घर पर अगर आपके मेहमान कोई आ रहा है तो अपने बच्चों को आप ये सलाह ज़रूर दीजिए, उनसे ये करवाइए कि जो भी घर में गेस्ट आता है उनको पानी पिलाने का काम आपका है। घर पर जो भी गेस्ट आते हैं उनसे बात कीजिए, न सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगे रहें बल्कि आपको उनको भी एंटरटेन करना है, उनको भी समय देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम समाज में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने अपनों के बीच में अपना समय उनको देते हैं, तो हमें समाज में बातचीत करनी आती है, हमें समाज में उठना बैठना आता है। और आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, एक अकेला इंसान सिर्फ अपनी आर्ट को लेकर तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर समाज में उसे छोड़ा जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल है किसी से सिर्फ बात कर पाना भी। तो ये जो बातचीत का गुण है ना, ये गुण अगर हम बच्चों को अभी से नहीं देंगे तो शायद उनके लिए मुश्किल होगा आगे समाज में अपनी चीज़ों को सामने लेकर आ पाना। और साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सिर्फ ये सीख अब ना दी जाए कि सिर्फ पढ़ाई करो और उसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ और इम्पॉर्टेंट नहीं है। सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ करिए, सब कुछ पर अपना ध्यान दीजिए, और वो ज़रूरी काम जो आपको लगता है कि बच्चों के एटिकेट्स का एक हिस्सा है, वो उसकी जो ट्रेनिंग है वो अभी से देना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आपने अभी नहीं सिखाया तो उसके बाद वो सीख नहीं पाएंगे और आप उन्हें सिखा भी नहीं पाएंगे। कार्यक्रम चल रहा है आशियाना, मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला।

आजकल बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ये कहते हैं कि बच्चे जब देखो मोबाइल फोन पे ही लगे रहते हैं। मोबाइल फोन ही उनका जीवन हो चुका है। कोई भी काम करवाना है मोबाइल हाथ में पकड़ा दो और आपका काम हो जाएगा। जैसे कि अगर बहुत छोटा बच्चा है, उसको खाना खिलाना है, तो हम उसको मोबाइल दे देते हैं, वो मोबाइल देखते देखते खाना खाता रहता है। लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि जब बच्चे का ध्यान खाने पर है ही नहीं, उसका ध्यान उसके हाथ में रखे हुए फोन पर है, तो जिस चीज पर आप ध्यान ही नहीं देते उस चीज का क्या हश्र होता है वो भी आप जानते हैं। तो ये बताने वाली बात नहीं है, ये बहुत क्लियर है कि अगर बच्चा खाना खाते हुए खाने पर ध्यान नहीं दे रहा है, यानी कि वो खाना उसके शरीर को नहीं लग रहा है, यानी कि वो जरूरी पोषण, वो जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चे की बॉडी को चाहिए, वो खाना खाने के बावजूद भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम डिजिटल डिटॉक्स की बात जरूर करते हैं, लेकिन डिजिटल डिटॉक्स को लेकर करते क्या है? तो अगर यहां पर एक छोटी सी टिप देनी हो तो मैं यही कह सकती हूं आपको कि कुछ समय आप बच्चे का दिन भर में, आपको लगता है कि आप खुद इतने बिजी हैं कि आप बच्चे को कैसे डिजिटल डिटॉक्स के लिए आप प्रेरित करेंगे, आप अपने बच्चे को अपनी लाइफ का एक दिन का सिर्फ एक घंटा आप दीजिए और उस समय में आप उसके साथ बैठिए और उससे फोन की कोई बात नहीं, फोन आपके और उसकी नजरों के सामने होना ही नहीं चाहिए। पर्सनल वन टू वन टॉक, कुछ भी, किसी भी बारे में आप बात कर रहे हैं, आप उसके साथ खेल रहे हैं या आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं या कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका और उसका न सिर्फ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है बल्कि आप डिजिटल डिटॉक्स की तरफ एक स्टेप फर्दर प्रोसीड कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे आप इस टाइम को बढ़ाते जाइए और धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि विदाउट आपकी प्रेजेंस भी बच्चा

मोबाइल छोड़ने लगा है और यहीं से शुरुआत होती है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की। अब ये टर्म जो है सुनने में थोड़ी सी नई लगती है, लेकिन अगर आप इसकी तरफ थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको लगेगा कि इसका कुछ ना कुछ असर जो है वो बच्चे के ऊपर हो रहा है। लेकिन ये तो बात है एक छोटे बच्चे की, एक बड़े बच्चे के साथ आप ये कैसे कर सकते हैं? उस बड़े बच्चे के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर आप बच्चे के साथ किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, बच्चा अगर इतना समझदार है कि वो किसी मुद्दे पर आपसे बात कर सकता है जो कि उसके इंटरेस्ट का है, तो आप बात कीजिए और उस समय आप फ़ोन की लत से उसको बिल्कुल दूर रखिए और धीरे धीरे जो भी हमने छोटे बच्चे के लिए कंडीशन एक घंटे की रखी है वो बड़े बच्चों के साथ अब 2 से 2.5 घंटे की रखिए और उसके बाद कोशिश कीजिए कि उसके फ्रेंड्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन हो, ताकि जब आप फ्रेंड्स के साथ, बच्चे के फ्रेंड्स के साथ आप भी बैठ के बात करते हैं तो सबको मज़ा आता है और धीरे धीरे बच्चे आपकी कंपनी को इंजॉय करते हैं। तो इससे न सिर्फ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा बल्कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ भी आपका एक स्टेप जो है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: समय हो चुका है 2:29। कार्यक्रम आशियाना में आज के लिए बस इतना ही। होगी आपसे दोबारा मुलाकात, आऊंगी 4 से 5 तक रहूंगी आपके साथ, लेकर आऊंगी प्रोग्राम अल्फा जन। लेकिन अभी समय है प्रायोजित कार्यक्रम का।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कलाकवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
2: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
2: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
2: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी,
3: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गवा बैठा ना। क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
2: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
3: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
1: राजा रवि वर्मा।
3: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाव बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी।

0: त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
1: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
2: मंगला
3: हाँ?
2: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
3: ठीक है।
2: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
3: हाँ हाँ।
2: उठाकर मुझे दे।
3: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
2: हाँ।
3: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
0: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
2: ये हाँ ऐसे, ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
3: अरे वाह।
2: और ये इसकी पूंछ।
3: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
2: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
3: लेकिन मुझे तो अरे मगर
2: ओ, बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
3: ठीक
2: हाँ,
3: है
2: हाँ, अब बना।
1: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
3: भाई
2: हा?
3: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
2: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
3: ठीक है
2: चल चल चल चल, चल।
3: हाँ,
2: हम
3: हाँ,
2: दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
3: हाँ, ठीक है, चल, चल, चल,
0: चल, चल, चल, चल, चल, चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
1: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हां, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलीमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राज्य की रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।

0: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
2: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
2: जी। रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेंसन,
3: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
3: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
0: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
3: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
0: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
2: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए।

0: FM 드래그 밴. 뉴스, 뮤직, 엔터테인먼트. FM 103 메가헤르츠.
1: Hello, good evening, my dear friends, my lovely and awesome listeners. अपनी खान सबके प्रोग्राम में स्वागत करिए से आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रगबान 103 मेगाहर्ट्ज़ ते अपनी खान सबी ट्यून इन करिना से अपनी खान लगा होस्ट और दोस्त आरजितम जन लोग दे एंड माय डियर फ्रेंड्स वंस अगेन अपनी खान सबके आज लगा लाइव फोन इन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स शो द वेलकम करिए से इट इज Exactly 6 p.m. in the studio, and for the next 1 hour 10 minutes, apni kan sabke invite kuri ase itulaga program de hissa lo bole karne. So, my dear friends, sit back, relax, and enjoy a delightful musical journey filled with your favorite Bollywood melodies. My dear friends, whether you are returning home from work after a busy day, spending time with your family, or simply unwinding with a cup of tea. Let the magic of Hindi film music add and warmth and joy to your evening, this beautiful evening. Itu program do hoile, it's all about our lovely and awesome listeners. Apni kani ammi khan lo dai, call us live, share your favorite songs, dedicate them to your loved ones, and send your greetings to friends and family near and far. So your request and messages will make this evening even more special. So my dear friends, apni khan sabhi jani ase apni khan phone ready thakibi. Keep your phones ready. Stay tuned and let the beautiful world of Bollywood music brighten our evening tonight. To my dear friends, phone number ase 0370-2243036. Aro ekbar phone number koi diye ase 0370-2243036 tade apni kan call kribi aur apni kan laga request message ami kan logote mangibo paribo and we have the first lucky caller hello
2: hello namaskar
1: hello namaskar kon bol raha hai
2: main rakesh bol raha hu himachal pradesh shimla se
1: acha rakesh ji aaj ka kupal itna matlab kismat itna acha ho gaya aapka first call lag chuka hai
2: first call lag gaya bahut acha hai आज मेरा लक बहुत अच्छा हो गया कि आज फर्स्ट कॉल लग गया बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बड़ी मुश्किल से कॉल लगती थी कि आज मेरा फर्स्ट कॉल लग गया बहुत अच्छा आपने आनंद आप आनंद लेके मैं सबकी कॉल सुनूंगा जिन दिन का कॉल भी लगेगा
1: क्या बात है क्या बात है तो बताओ बताओ कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा
2: जी जी जी तो सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी की टीम को 90 वर्ष की हार्दिक शुभकामना जो है 98 तो आज मुझे गाना सुनना है दिल का रिश्ता
1: दिल का रिश्ता ओके
2: जी जी उसमें उसमें एक गाना है दिल चुरा ले

0: से चेहरे वाले मुस्कुरा ले, वो चांद से चेहरे वाले, ये वाला गाना सुनने।
1: क्या बात है, आप तो गायक भी हैं।
0: थोड़ा थोड़ा गुनगुना देते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा गुनगुनाना गाना थोड़ा, कभी इससे क्या होता है तो मन मन भी खुश होता है, तो अंदर से जो है बहुत अच्छी रहती, तो बिल्कुल खुश रहती है आदमी, जो थोड़ा गुनगुनाना चाहिए हल्का फुल्का।
1: हाँ, वो बहुत जरूरी है। और
0: जी जी जी,
1: और बताइए किस किस का नाम लेना चाहूंगा।
0: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
1: थैंक यू।
0: तो राजस्थान जयपुर से पूरन वर्मा है, रमेश प्रजापति है, अविनाश तेली है, और भगवान सिंह परमार हैं, और राम नरेश कंजर हैं, और अमल बसमाचार्य हैं, विमल बसमाचार्य हैं, अंजलि बसमाचार्य हैं, तनुश्री महाराष्ट्र से हैं, और तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
1: ओके, थैंक यू सो मच राकेश जी, आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा, और सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
0: धन्यवाद,
1: यू वेलकम, बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिखन लगा रेगुलर लिसनर ढाकिया से शिमला ब्रा राकेश ताहिर रिक्वेस्ट कर लगा गीत मिखन पोइला हुनी हबो दिल का रिश्ता फिल्म ब्रा कुमार सानू अलकायक निकुआ गीत आरो खारिस म्यूजिक दिसे नदीम और श्रवण लिरिक्स समीर और ताई नाम लो सबके इटु की टिकेट कुई दिया से हुनी के ना एंजॉय करबी।

0: এইটো প্ৰগ্ৰামটো হ'লে 7:10 তাক চাই থাকিব। তো আপুনি খান চবেই ফোন উঠাবি আৰু কল কৰিবি আৰু আপুনি খান লগা ফেভৰেট সং আমি খান গে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰিব। উই হেভ আৱাৰ নেক্সট কলাৰ উইথ আছ। হেল্ল'
1: হেল্ল'
0: হেল্ল' হু ইজ কলিং? নমস্কার, কোন বল রা হ্যায়?
1: মে রমেশ প্রজাপতি, গ্রাম মায়া, তহসিল রহেতী, জেলা সিহোর, এমপি সে বল রা হু স্যার জি।
0: আরে রমেশ জি, আজ কা কিসমত ওর ভি আপকা তরফ, মতলব আপকা পাস হ্যায় আজ
1: জি,
0: আজ ভি লাগা হ্যায়
1: জি জি জি। আপ বাত হো তো মে লাগাই লেতা হু।
0: আরে ইয়ার, লেকিন আপ আপনে সুনা এক মন্দিরা নে এক সন্দেশ শেয়ার কিয়া থা, মন্দিরা যে পেলে কলার থা না? আচ্ছা, আপকো আচ্ছা ও নি শুনা থা? আচ্ছা ঠিক হো যায়গা। তো পতা ইয়ে আজ কা দিন কেসা রাহা?
1: আজ কা বড়িয়া হ্যায়, আজ মার্কেট হ্যায়, বড়িয়া দিন হ্যায়, আজ কোই দিক্কত নেই, বড়িয়া হ্যায়, থোড়ি গরমি থি তো গরমি তো চলেগি
0: জি।
1: হ্যাঁ
0: জি
1: হ্যাঁ।
0: আচ্ছা আর বতাও আজ কোন সা ওয়ালা গীত শোনা চাহুঙ্গা, ফিল্ম কা নাম বতাও।
1: আজ হ্যাঁ
0: অর্পণ।
1: অর্পণ কেসে হ্যায় নাদান ঘুমরু পায়ে রে,
0: ये मैं सुन रहा हूँ, पता नहीं मेरा म्यूजिक बैंक में ये होगा ना नहीं होगा।
1: देखो नहीं होता वो न्यूज़ देख ली।
0: हाँ, आप आर पार एक है लेकिन अर्पण नहीं है।
1: अर्पण नहीं है, शोर मचाए शोर।
0: बताइए फिल्म का नाम?
1: शोर मचाए शोर।
0: शोर मचाए
1: शोर मचाए शोर। एक डाल पे तोता बोले, एक डाल पे मैना।
0: शोर इन द सिटी है, शायद मेरा म्यूजिक बैग में नहीं है, आई एम सॉरी।
1: आंखें
0: बताइए।
1: आंखें आंखें
0: आंखें।
1: हाँ
0: ठीक है, आंखें आंखों आंखों आंखों में आंखों के सामने आंखों के कुछ तक आंखें नहीं है, ये भी
1: आंखें भी नहीं है।
0: अरे क्या हो गया, आज जो भी मांगता है वो मेरा म्यूजिक बैंक में नहीं है। दो रास्ते होगा, यस।
1: हाँ दो रास्ते की देख लो, फिर उसका जो भी हो सर वाला।
0: हाँ बताइए कौन सा वाला नंबर?
1: बिंदिया चमकेगी।
0: बिंदिया चमकेगी, ओके।
1: चूड़ी खनकेगी
0: जी। और क्यों ये गीत चुना है? हाँ कुछ खास
1: अच्छा लगता है ना।
0: अच्छा ठीक है, और नाम लेना चाहूंगा किसी का?
1: जी जी जी, हमारे मित्र है भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, रजराज मोदी जी, केसरी सिंह राजपूत है, माधुलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, और धर्मवीर है दिल्ली से, लोकेन बनवा है नानकेड़ी से, आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूर्णिमा जी है, अविनाश जी है, राकेश जी है, पूनम जी है, विमल जी है, अमर जी है, मोल्डी जी है, अमर सिंह है, भाई को मुंडा है, रमेश पात्र है, और आप लोग।
0: क्या बात है। और रमेश जी, मेरे को ये पता हो कि आपको जब ये वाला मौका देता है ना मैं
1: जी,
0: नाम लेने का
1: जी,
0: तो मिशन का तरह आप शुरू करते चाहता है एकदम स्पीड से।
1: मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। कम समय में सारे दोस्तों को याद हो गया, मतलब कितना बढ़िया काम।
0: क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच रमेश जी, आपसे बार बार बहुत अच्छा लगा। सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग। তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমি খান লাগা রেগুলার লিসনার থাকিছে রমেশ প্রজাপতি ফ্রম এমবি, আর তাই রিকুয়েস্ট করা গীত আমি খান শুনি হব দো রাস্তে, ফিল্ম লতা মঙ্গেশকর আওয়াজতে, মিউজিক দিছে লক্ষ্মীকান্ত প্যারিলাল, লিরিক্স আনন্দ বক্সি, আর তাই নাম লওয়া সবকে এটা গীত ডেডিকেট করে দিয়েছে।

0: वेल माय डियर फ्रेंड्स, अपने खाने 1970 साल लगा मूवी दो रास्ते फिल्म रा अपने खाने गीत होने था किसे और मैं उम्मीद करे सा अपने खाने सॉपी आज लगा प्लेलिस्ट कुंडो अपने खाने बनाई दिए से तो खान सॉपी होने के ना एंजॉय करे था कि वो बिशी मनो यदे फोन इन प्रोग्राम ने ट्राई करी था कि वो पड़े होली भी यस अमी खान हताई को निचना अमी खान लगा एक ता अलग किस्मत भी लग गया से कपाल भी लग गया से तो लेट अस सी हु विल बी आवर यू नो लकी कॉलर राइट नाउ. हेलो
1: जय माता दी.
0: ओके जय माता दी
1: जी, मैं बहुत देर से ट्राई करा था और भगवान का शुक्रिया, माता रानी का शुक्रिया कि मेरा कॉल लग गया आखिरी कॉल.
0: जी
1: तो फिल्म का नाम रहेगा सर रेडियो.
0: ओके
1: है मूवी आपके पास
0: रेडियो लव ऑन एयर. एक है रेडियो वाला नहीं है,
1: रेडियो मूवी नहीं है
0: आपका जो मूवी मंग रहा है वो सिर्फ रेडियो है ना, रेडियो का नाम से है
1: मूवी का नाम ही रेडियो है और उसमें गाने के बोलते बजने दो जरा मन का रेडियो, ये गाना था
0: मन का रेडियो इधर है मन का रेडियो. हाँ लेकिन पता नहीं अब ये वाला गीत है या पता नहीं. ठीक है मैं ये पहचानता हूँ हिमेश रेशमिया का.
1: हाँ
0: का रेडियो है. हाँ
1: आकाशवाणी का स्थापना दिवस है तो 90 वर्ष का हो गया आकाशवाणी.
0: जी
1: तो इसी पर मैं ये गाना सुनना चाह रहा था. मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था कि आज मेरा कॉल लग जाए तो मैं ये गाना सुनना था आकाशवाणी का स्थापना दिवस, क्योंकि आकाशवाणी के माध्यम से हमें कार्यक्रम सुनने को और साफ जानकारी और सही जानकारी सटीक जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से रेडियो के माध्यम से मिलती है सर.
0: क्या बात है.
1: रेडियो के माध्यम से दोस्त हमारे को इतने मिल गए, आपके कोई माँ से भी हमें दोस्त मिले तो उनसे भी बात होने लग गई है और जैसे हमारे मध्य प्रदेश के भी 3-4 कॉलर है और बहुत सारे हर राज्य से कॉलर हर श्रोता के साथ जुड़ा हो गया सर रेडियो के माध्यम से.
0: हाँ बहुत सही पता है आपने. और रेडियो एक ऐसा मीडियम है जैसे मतलब आप अभी मतलब तुरंत पूरा देश का हर जगह से कनेक्टेड हो रहा है. या
1: जी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है और आवाज के माध्यम से श्रोता पहचाने लगे और एक दूसरे से संपर्क भी कोशिश करते हैं सर.
0: जी और आज जो अभी सोशल मीडिया का जमाना जो बोलता है
1: जी,
0: आज का जमाना में भी रेडियो का जो न्यूज है समाचार है वो आज का मतलब सबसे नंबर वन न्यूज बोलते जाता है माना जाता है.
1: जी.
0: हाँ ऑथेंटिक न्यूज राइट.
1: हाँ जी सर, क्योंकि सोशल मीडिया ये पर जैसे आकाशवाणी के माध्यम से और श्रोता जो पराने हो या नहीं हो जो जुड़ गए ना तो रेडियो से मान लो एक विश्वास हो गया जी, आकाशवाणी का श्रोताओं का विश्वास हो गया.
0: ठीक है पुराण वर्मा जी, आप वो वाला विश्वास दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आपका मतलब आप ही था आज का लास्ट लकी कॉलर तो इसके लिए भी शुक्रिया. और किसी का नाम लेना चाहूंगा
1: जी सर, सबसे पहले तो आप हैं.
0: थैंक यू.
1: और मेरा दोस्त राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी बाई है, बिमल है, अमल है और सुनी क्या नाम है उसका अंजलि है और जितने लाइव कॉलर सबका श्रोताओं के लिए सुनाना चाहता हूँ सर ये गाना.
0: ठीक है तो थैंक यू सो मच पुराण वर्मा जी, आपसे बात हुआ अच्छा लगा. सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग.
1: थैंक यू सर.
0: यू आर वेलकम. तो माय डियर फ्रेंड्स पुराण वर्मा राजस्थान रा अमी खान लगा रेगुलर लिसनर थकी आसे ताई लगा हे लास्ट कॉल थकी छे और ताई रिक्वेस्ट करे निशना रेडियो लव ऑन एयर इतु लगा गीत लगते अमी खान याते मन का रेडियो इमान भाल गाना एक चूज करे से होनी के ना एंजॉय करे हिमेश रेशमिया वास्ते.

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने

0: आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
1: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
2: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,500,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रूपये और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रूपये देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के

0: विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
7: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: FM 103 megahertz.
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे का

0: जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली एंड ऑसम लिसनर्स। अबनी खान सबके प्रोग्राम दे आपको स्वागत करी आसे आकाशवाणी कोहिमा FM ट्रकोबान 103 MHz ते। My dear friends, as the day slowly winds down and the night settles in, it is the perfect time to relax, reflect and enjoy some beautiful Bollywood songs that soothe the mind and warm the hearts. My dear friends, ajurati mohi ekta selection, ekta collection of gentle melodies, soulful voices aro timeless lyrics that are perfect companions for a peaceful night anidiyese. Whether you are enjoying a quiet moment at home, finishing up the day's work, or simply gazing at the stars, let the songs create the perfect soundtrack for your evening tonight. Iti apni kan poila geet huni apo Wake Up Sid film ra Kavita Seth aru Amitabh Bhattacharya awaste. Music disa Amit Trivedi, lyrics Javed Akhtar. A timeless arrangement and a simple arrangement and heartfelt lyrics, which made it one of the most loved contemporary Bollywood melodies. Hunikna enjoy kribi, my dear friends.